0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिज जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटरा सुगुर बनेल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफी ओस्ट बनी हो ना वट्र फिर पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली
1: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मै नै जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
5: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477

0: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टिकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
0: तपसिल
1: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी,
0: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी,
1: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
0: नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
1: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
0: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
1: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमर गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
3: रडगैया झोला उद्योग, मुनुवा रोड, टिकापुर, कैलाली। संचालक रामप्रसाद चौधरी।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाएं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा लैप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दंत रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 रक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला
3: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा को सूचना टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा तपसिलको मिति समय र स्थान नहुने भएकाले सम्पूर्ण ब्लक टोल संयोजकहरू प्रतिनिधिहरू राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू पत्रकार तथा सरोकारवाला सबैलाई पत्रचार गरिसकेको छ। कुनै कारणवश पत्र नपुगेको भए यसै सूचनालाई आधार मानि उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 भदौ 6 गते शनिवार समय बिहान 11 बजे स्थान टीकापुर योग आश्रम हल ब्लक नम्बर 18 टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था कैलाली
2: टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया न करा रेडू बिगड़ी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़े चुरुंगर जानवर की आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भर्न से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेर बहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू हासक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मा फेर सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टिकापुर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासक अधिकृत ममता बास्तोला है स्वागत। कर्मचारी को मिला के काम करना कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागरजी के सुझाव। टिकापुर नगर के कार्यवाहक नगर प्रमुख के हुईना कहना विषय में मुद्दा फिर से लंब्यागिल, मुद्दा है समय पूर्ण इजलास में पठेना आदेश। सुदूरपश्चिम के मुख्यमंत्री भत्ता हो, कर्णाली के मुख्यमंत्री स्थायी है, विश्वास के मत प्राप्त हो। टिकापुर बाजार में गैस के अभाव कायम। आप पूरा खबर। टिकापुर नगरपालिकामा पहिल पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महिला आयलबाटै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मनसे सरवा हुके आयल उपसचिव ममता बास्तोला बुधबार कार्यालयमा हाजिर गर्नबाटै लाओ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोला सहित सरवा हुके टिकापुर अहिलक और कर्मचारी हुकरन फे टिकापुर में एक कार्यक्रम के बीच स्वागत करगिलवा। स्वागत कार्यक्रम में बोलती प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोला स्वागत करलकमा नगरपालिका है धन्यवाद देहलबाटै नेपाल सरकार हो टिकापुर नगरपालिका के एन कानून तथा नगर कार्यपालिका के निर्णय अनुसार नगरपालिकामा काम कार्यवाही आगे बढ़ाइन प्रतिबद्धता व्यक्त करले बाटै वहां कर्मचारी हुक्र राष्ट्र के सेवक रहले ओर से ए नियम मिलना काम सेवग्राही हुकरन दुख नै देना हो। सौहार्दपूर्ण वातावरण में सेवग्राही हुकरन के काम करना माठक के कर्मचारी हुकरन निर्देशन समेत देले बाटै सकु नागरिक हुकरन के प्राथमिकता सुशासन रहले ओर से पालिका में समेत बनैना जिम्मा कर्मचारी हुकरन के कंधा में आइले ओर से नीति नियम में रहकर काम करना कर्मचारी हुकरन निर्देशित कर बाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित कर्मचारी हुकरन स्वागत करती टीकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागरजी टीकापुर नगर पालिका में एक ठो परिवार रहले ओर से आजकल पाछे कोई किनो काखा पाखा नहीं करके काम करना निर्देशन देले बाटै टीकापुर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 13 जाने कर्मचारी सरुआ होके आयल बाटै। बुधवार सुनवाई के निकास ऐना अपेक्षा करगिल टिकापुर नगर के कार्यवाहक नगर प्रमुख के हुईना कहना विषय में मुद्दा फिर से लंबा गिलवा मुद्दा दर्ता हुलक दुई महीना पास पहल पटक सुनवाई करती सर्वोच्च के संयुक्त इजलास से मुद्दा है समेत पूर्ण इजलास में पठेना आदेश दिल के हो। बुधवार 3 नंबर सुनवाई में हुलक रीत में हरिप्रसाद फुलियालो शांति सिंह थापा के संयुक्त इजलास से मुद्दा पूर्ण इजलास में पठेना आदेश दिल के हो। 2082 फागुन में कार्यवाहक नगर प्रमुख हुलक रामबहादुर नागरजी हटाके 2083 जेठ 14 गते कार्यपालिका के बैठक से बलराम चौधरी कार्यपालिका नगर प्रमुख कार्यपालिका से समेत बलराम चौधरी नगर के कार्यवाहक नगर प्रमुख चयन करल रहा। तत्कालीन कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागरजी अपना हनै कार्यवाहक बनाए पर्ना माग सहित के जेठ 26 गते सर्वोच्च अदालत में अंतरिम आदेश माग करल है। सर्वोच्च अदालत से बलराम चौधरी है कार्यवाहक नगर प्रमुख बनैना कार्यपालिका के बैठक कार्यान्वयन नहीं करना कहती अल्पकालीन अंतरिम आदेश समेत दैगिल रह। यस साता टिकापुर बजार में गैस के दोसरा पटक अनुगमन हुआ। टिकापुर में गैस आपूर्ति संतुलन में आयल नहीं हो। बुधवार आदिकावि ट्रेडर्स से समेत भेरी गैस लनलक और पसल मन से बिक्री करती रलक गुनासो आयल पाछे प्रशासन से अनुगमन करल के हो। भेरी गैस के अनुमति नहीं पैलक आदिकवि से 330 सिलेंडर भेरी गैस समेत लान के बिक्री करल बा। भेरी डीलर रोजी ट्रेडर्स में 150 बम प्रादर्श में 88 सिलेंडर बांटल बा। कल से बुधवार संजय के अनुगमन करवेर आदिकवि बाहेक के कोनो फे डीलर गैस नहीं मिलल। इलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुर के प्रमुख तारानाथ पनेरू से हेलो सरकार में गुनासो पड़क ओर से अनुगमन करना आइलको आदिकवि ट्रेडर्स से अनुमति बिना नई समेत गैस लानल तेसरा व्यक्ति विवरण के समेत वितरण के जिम्मा पायल बटवागिल बापनी रूके अनुसार भेर गैस के आधिकारिक विक्रेता सिफे समेत लौह पसल हे ढेर गैस उपलब्ध करना पुरान नई पैलक मनो लौह है सिलेंडर सहित बिक्री करना अवस्था इलाको गैस के सिलेंडर साते बेर फरक कंपनी पाके पैसा लेना करल गुनासो समेत आयल बटवागिल बा बुधवार आदिकवि ट्रेडर्स न्यू अब्रेला मालिका एन नव दुर्गा ट्रेडर्स बम ब्रादर्स लगायत के गैस डीलर अनुगमन हिलवा न्यू अब्रेला ट्रेडर्स के संचालक लक्ष्मण देवकोटा से अनुगमन में गैस आपूर्ति में नियमित नई करके 3,000 जटरा खाली सिलेंडर रहल बटोले बाट या आगे समेत साउन 29 गते फे इलाका प्रशासन और टीकापुर नगर पालिका गैस के अनुगमन करल रह। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से ईवी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली को अत्यंत जरूरी सूचना। व्यावसायिक रूप में केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लागत साझेदारी सहयोग कार्यक्रम रहेकाले आयोजनासँग साझेदारी गर्नको लागि रितपूर्वक भरिएको माग आवेदन प्रस्ताव आयोजनाको कार्यालय टीकापुर वा सम्पर्क कार्यालय सुखड कैलालीमा भदौ 5 गते भित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आयोजनाको फेसबुक पेज रानी जमरा कुलरिया वा वेबसाइट वा सम्पर्क नम्बर 091-561-414 091-561-415 वा कार्यालयमै सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली।
2: ल यति छिटो आमा बन्न लागको त अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ। कस्तो गाह्रो हुन्छ, पनि काम गर्न विदेश जानुभएको छ, के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन, म त जान्नु परे जस्तै लाग्छ।
3: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड गाँजा चरेस रक्सी ब्राउन सुगर नसा चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमको नजिकै टीकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार। टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
6: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
0: विश्राम पाछि फेरसे स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मुख्यमन्त्री खगराज भट्टा ओ कर्णाली प्रदेशकी मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाही विश्वासकी मत प्राप्त गर्नेबाट कालिक बैठक प्रदेश सभाकै बैठक से दुनू जाने मुख्यमन्त्री विश्वासकी मत प्राप्त गर्ने हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी मुख्यमन्त्री भट्टा विश्वासकी मतकै पक्षमा 31 मत ओ विपक्षमा समेत 15 मत परलमा सभामुख भीम बहादुर भण्डारी बैठकमा घोषणा गरल है। यागी मुख्यमन्त्री भत्ता से प्रदेश सभा बैठकमा विश्वास के मत केला प्रस्ताव प्रस्तुत समेत गरल है। विश्वास के मत के पक्षमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले के प्रदेश सभा सदस्य तथा विपक्ष नेपाली कंग्रेस और राप्रपा के सभा सदस्य हुँक्रा मतदान गरल है। कंग्रेस के 3 सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहे। नेकपा संसदीय दल के नेता भट्टा साउन 29 गते सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। उसका कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री मंगल बहादुर शाही फे विश्वास के मत प्राप्त करने बाद कालिक बैठक प्रदेश सभा के बैठक से मुख्यमंत्री शाही विश्वास के मत संबंधी धरल प्रस्ताव में बहुमत से पारित करलक हो। कर्णाली प्रदेश सरकार के लाव नियुक्त 3 मंत्री पद तथा गोपीय नेता के शपथ ग्रहण करवाट कर्णाली प्रदेश के प्रमुख यज्ञराज जोशी से काली सामाजिक विकास मंत्री जीत बहादुर मल्ला आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री टेक राज पछाई ओ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मंत्री कमल बहादुर हमाले पद तथा गोपीय नेता के शपथ ग्रहण करा गिरेको। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रलत मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। हाल मनसून के न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास रहल बा। आसपास के एकर प्रभाव से देश के पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलने बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में साधारणतया मौसम बदलन भाकल से मध्य प्रदेश के साथे कोसी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक रूप में मौसम बदलती बा। खोजखबरमा फेन्से विश्राम विश्राम पाछे फेर्से सुन्ते रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
7: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा बारे अत्यन्त जरुरी सूचना।
8: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। वडा नम्बर 2 विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 4 गते।
7: वडा नम्बर 3 रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 5 गते।
8: वडा नम्बर 1 गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन भदौ 6 गते।
7: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते।
8: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते।
7: वडा नम्बर 9 ढुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते।
8: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते।
7: र वडा नम्बर 7 छत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते।
8: सबै ओडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
9: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
10: महिनै जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
9: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
10: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तुम अब भी जाए।
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठिक नै हुइल घाउ खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417। विश्राम पाछ फिर से स्वागत बा। बर्दिया की गेरुआ गांव पालिका वार्ड नंबर 2 स्थित एक प्रिय राठौर माभी पाताभार के विद्यार्थी उकरण शैक्षिक उत्प्रेरणा तालिम प्रदान करगिल बा। सामुदायिक विद्यालय में माभी तह के विद्यार्थी उकरण तालिम प्रदान करगिल खो। गेरुआ गांव पालिका 2 नंबर वाड़ा कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय पाताभार के समन्वय तथा गगन सिंह फाउंडेशन गेरुआ के आयोजन में हुलक तालिम सहजीकरण विजन तालिम तथा परामर्श केन्द्र टीकापुर के प्रावधिक सहयोग में हुई हो। तालीम में विद्यार्थियों करण मोबाइल लत के प्रयोग से कैसिक बचना लागू औषध दुर्व्यसन से बचना उपाय पढ़ना बानी के विकास लगायत के विषय में विजन तालीम तथा परामर्श केन्द्र टीकापुर के प्रमुख लोक बहादुर नेपाली प्रशिक्षण दे रहे। ओझानकी गांवपालिका में बाढ़ीजन्य विपद संबंधी स्वयंसेवक हुकरण नमूना अभ्यास करगिल बा। गांवपालिका के वार्ड नंबर 3 के नया लायकपुर स्थित के जमरा कुलवामा बाढ़जन्य विपद संबंधी स्वयंसेवक हुकरण से नमूना अभ्यास करगिले खो। विपद व्यवस्थापन शाखा के अगुवाई में होलक नमूना अभ्यास में जानकी गांवपालिका के जनप्रतिनिधि नया लायकपुर सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति के पदाधिकारी स्थानीय वासी हुकरण के उपस्थिति रहल रह। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगर पालिका में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तुला है स्वागत। कर्मचारी हुकरण मिला के काम करना कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागर जी के सुझाव। टीकापुर नगर है कार्यवाहक नगर प्रमुख के हुईना कहना विषय की विवाद लंब्यागिल मुद्दा है पूर्ण इजलास में पठेना आदेश। सुरपश्चिम के मुख्यमंत्री कर्णाली के मुख्यमंत्री साई है विश्वास के मत प्राप्त और टीकापुर बाजार में गैस के अभाव कायम। रीता बकलत थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकबी। अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू। सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM सुनते रह।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशानाटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261
2: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिम

0: पिता ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश पिता ले लीते कैश पिता ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वडा कार्यालयके अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बान के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा ले पर्ने बा।
0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडा कार्यालय लाइटपुर।

0: लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका दिवस 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मरमत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
4: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टिकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
2: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10वां वार्षिक साधारण सभा को सूचना टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10वां वार्षिक साधारण सभा तपसिल को मिति समय र स्थान नहुने भएकाले सम्पूर्ण ब्लक टोल संयोजकहरू प्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पत्रकार तथा सरोकारवाला सबैलाई पत्रचार गरिसकेको छ कुनै कारणवश पत्र नपुगेको भए यसै सूचनालाई आधार मानि उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ साधारण सभा हुने मिति 2083 भदौ 6 गते शनिवार समय बिहान 11 बजे स्थान टीकापुर योग आश्रम हल ब्लक नम्बर 18 टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था कैलाली।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो त जाने विचार छ कि नै त?
1: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइजन पन भएन, जाऊ भने भुवाको मंगलसूत्र पन भाँची गयो।
0: यो टिका लागि त सामुएल जोलस बनेको, बरु अहिलै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याटै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
1: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो, थोट त बाई जाउँ।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनचाँदीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर टिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-2061।
3: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड़नी सेवा, टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848-42-73-59।

0: बुका तिरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झोलै फटाका आजी ठ का कना हो बाबा फ्यो ओस्टबाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनले से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपि हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे या झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कतरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबु लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुईन कहिए आनल झोला जसका टस बाटिन ये बुढ़ ढंग कब्बू पसल छानकन झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपनी के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका पर्यटन 101 MHz और के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी के सलाह के बैठक सको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रहण स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहू मैम श्यामी के टेक के बैठ के साथ देते भाई दीपेन्द्र भट्टराई और मई बात अपनी अपने संग्रह मैमी खेन उमी के भाई सुन्डी बाटी अपने हो गई रेडियो टीका पर्यटन 101 MHz मार्फत और मोबाइल सेट मार्फत 101 MHz मार्फत सुन्टी रेडियो सेट मार्फत 101 MHz मार्फत सुन्टी करे इंटरनेट के पहुंच रहा संगाई रूप से www.tikapureFM.org मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप हमारे पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत सुनी सकते और टीकापुर एफएम के अपने एप्लीकेशन फैन से डाउनलोड कर सकते डायरेक्ट रूप में सुनी सकती कल से प्ले स्टोर में जाकर टीकापुर एफएम एप्स डाउनलोड करके फैन अपने सुनी सकती हम हन अपने ठाव से नाम जानकारी कराम वही ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाई सकती संगाई रूप मौसम सुहाना पलघरी रमाइलो बाजे जहां हुई खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जन आईटे कर भी कार्यक्रम में आईटे कर भी विशेष करके ये कार्यक्रम में अपने हुकन के संगे रमाइलो गप करना हो और ये कार्यक्रम में चाहिए विशेष करके कार्यक्रम में आईबी कलेज से ये कार्यक्रम में चाहिए जस्ता कार्यक्रम में आईबी कलेज से अपने हुए कोई भी टैलेंट का जस्ता गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला सारी शेर चिड़ी चुड़ुगन की आवाज

जानवर की आवाज निधन के नकल के कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभा अपने हुए सुने सुनाएक लग उस कार्यक्रम में सहभागी जनेबी जस्ता गीत गजल मुक्तक भावना चुटकिला सारी से चिड़ी चुरुंगिन की आवाज जानवर की आवाज निधन के आवाज कोई भी प्रतिभा कोई भी टैलेंट सुनाएक लग कार्यक्रम में आज एक दिन सहभागी जनाएक बना भी और ये कार्यक्रम में विशेष करके अपने संघे बटुमय मीके सही मोर आवाज अपने ठंड पुगाई टे भाई दीपेन्द्र भट्टराई और मैं बात अपने अपने संग्रह मैं तो कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश कर एक रमाइलो गीत से गीत के पास मैंने बाटू डाल करते कर विश्व 91.5 61.2 इसे पास मैंने तब से मिला एन्जॉय करी रमाइलो गीत से गीत के पास मैं आईने बाटू

हजुरहरु मेरो यार गर्नु तोहिन से प्यार बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जोली आफ्नो गनकिला कार्यक्रम बाटोमा हामी सानो मिके साथ दिन भाइ दिपेन्द्र और यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz जस्तो हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत आफ्नो काम सुने सक टिकै किन जानकारी गर्दै बारु जग्गा रुपियाँ आज टिकापुरमै घाम लागल बा अपनै ठाउँमा घाम लागल बा कि नै कसैन बा समय रुपजक कर्तिवाती लगभग लगभग चाड पर्व के शुरूआत हो गेल हमने गुर भदौ महीना से शुरूआत कही सकली गुरही से शुरूआत हो सकल अब लगतै लगतै चाड पर्व आई हेरी अब जैसे रक्षाबंधन फैन आई तब जाके कृष्ण जन्माष्टमी आई हिंदू नारी हुकरन के तीज आई वस्ते के लगातार रूप में चाहिँ यह महीना में तीन चार थो लगभग लगभग त्यौहार बा के एक बार चाड़ बा तब जाके वस्ते के छठौ महीना में से फिर शुरू हुई वैसे के सातौ महीना आठौ महीना नौ दसौ महीना ग्यारहौ महीना सब देर को चाड़ पर्व से भरल भरल दिन आई थी बाबा अब शुरुआत कई सीख ले बाती हमें ओके जे जहाँ हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जन मेरी दोपहर की समय हो दोपहर के समय है कुछ हदसम मतलब रहरंगित कार्यक्रम लगी दोपहर के समय अलसी समय है कुछ हदसम दूर कार्यक्रम अपने हुकन के संगे बटो मई और मी के भाई अपने हुकन सही साथ देख पनारी यात्रा करे पनारी हमारे संगे संगे कहीं की अलसी समय हो अलसी समय है कुछ हदसम दूर कार्यक्रम अलसी है कुछ हदसम भगाए लग हमारे अपने हुकन के संगे एकदम तम तैयार बाटी तो फटाफट चाहिए डाल करते कर भी सुने कानवे 5612555 अर्थात 0919561255 लाइन एकदम खुला बका नाम आप लोग जानकारी करती कार्यक्रम में फैंस एंजॉय कर एक ठाव रमाइलो गीत से गीत के पास मैंने बार डाल करते कर भी सुने कानवे 5612555 लाइन खोले बार

हजुर बिल्कुलै रमाइलो गीत सुन्थे गीत में एक्चुअली टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थे कोई बात नहीं हो अगे कार्यक्रम में सहभागी जाने के आपने कि हमारा स्टूडियो के लाइन एकदम खुला आवाज सुनने 91-5-61-255 अर्थात 09-15-61-255 एकदम लाइन खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जाने भी अपने को हमार रमाइलो गफ हुई रमाइलो बातचीत हुई का नाम जानकारी करना चाहम विशेष करके अपने हुकन तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में चाहे बिल्कुल सहभागी जाने भी का नाम है दुकान अर्जी कर सो कहेगी संगे ये कार्यक्रम चाहिए विशेष करके अपने हुकन के संगे चाहिए हो अपने हुकन के संगे चाहिए रमाइलो करना हो अपने हुकन के संगे चाहिए एकदम मतलब अपने के टैलेंट सुनना हो कोई भी टैलेंट जस्ता गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी चीज अपने यदि मतलब सुनना मन हुई अपने कार्यक्रम में चाहिए मतलब कहना मन हुई मतलब मैं फैन अपन गीत गाई चाहम या गजल मुक्तक भावना कह चाहम चुटकिला शायरी शेर कह जानम कहम कह के अपने सोच बनाई थी भी मन में तो हमारे कार्यक्रम में चाहिए सहभागी जने भी सुने का नाबे 5-61-255 के लाइन एकदम खुला बा तो कार्यक्रम में डायल करते कर भी कार्यक्रम में आईटे कर भी तस्म कर फिर से एंजॉय करी ठाव गीत से गीत के बाद समय नहीं बारू डायल करते कर भी सुने का नाबे 5-61-255 लाइन खुला बा

0: गीतकी पाछ पुनः स्वागत कार्यक्रममा कोही टेलिफोन लाइन मालबाटै बोल्न चाहन्छु। हजुर राम राम। हजुर राम राम।
1: राम राम। हजुर राम राम।
0: हजुर हजुर नारायणजी का हाल खबर? अपने आवाज कट कट के आई रह नारायण जी कहर बाटी
1: घर भीतर बाहर बाटो तब मारे आवाज नहीं ऑक्सीजन नहीं पाई
0: घर एक भीतर बाटो।
1: हजुर हजुर घर भीतर बाटो
0: ए घर एक भीतर बाटी तब मारा आवाज चाहिए बाहर नहीं पठाई सकते कि का मोबाइल।
1: हजुर हजुर
0: मैं भी घर एक भीतर रखू हेरी कोठा में
1: अपने रखी तो अपने तो आप हमने बाकी ना और रुके लग गए।
0: ओके तो कार्यक्रम में सहभागी जनैली तो आज काम में नहीं आईली की का नारायण जी?
1: अरे काम में से तारे दे दो
0: यहाँ पे कहो कलवा खाई गिल बाकी को एक लात कहो घूम सकली को है नहीं आप दूसरो लात आप कलवा वाला खा के आप दूसरो लात आईना बिचार बा वही
1: फोन करे तो आप
0: ये आपने फोन कर करके बोलाई थी तब जवाई हुई ना। ओके नारायण जी अपने से आज बात मजा के नहीं हुई पाई कोई बात नहीं हो आज कार्यक्रम में सहभागी जन आज कब्जा सुने भी सुना डारी फटाफट नहीं तो फिर टेलीफोन कटे से की संपर्क हुई टूटे से की लिए कब्जा सुने भी आज सुनाई ली नारायण जी शुरू करी धन्यवाद मन परल बर्दिया घर परल कैलाली नहीं मन परल बर्दिया जिला घर परल कैलाली। ओके नारायण जी हमन कल कैले रहे वहां से रमाइलो गफ हुई रमाइलो बातचीत हुई अपने कृपया हमारे कार्यक्रम में सहभागी जन ऐटे कर भी कार्यक्रम ऐटे कर भी रमाइलो गफ कार्यक्रम सुनने का 9561255 के लाइन खुले बात ठीक ठाक गीत जोड़ गीत के पास समय नहीं बाटू डाल करते कर भी 9561255।

0: वेबले कार्यक्रममा सहभाग एकदम आइलो गीत चाहिँ सुन्दै सुन्दै क्वेटर फोन लाइनबाट हजुर राम राम
1: राम राम हजुर
0: के बोल्ली
1: राम बहादुर चौधरी
0: राम बहादुर चौधरी कहाँ से
1: पेपर कोटी लम्की चोहा
0: लम्की चोहा से पेपर कोटी
1: हजुर
0: लम्की चोहा से पेपर कोटी गले से ठ्याक्क कोहर केकर केकर साइड ओर हो यी गाउँ
1: अपने गुलरा से उत्तर है
0: गुलरा से उत्तर गुलरा से उत्तर तो ए उत्तर गले से सड़क के मेन रोड से उत्तर लिंग नहीं ओके अब याद आ गिल मिहिन अगे और बताइए कौशा का थी राम बहादुर जी गुलरा वहाँ लिंग पेपर कोटी और बैठ के लसरी तो आजकल तो बनकस वनकस नहीं मिलत जे
1: डमोरी बरतू
0: ए अपने के करे बनकस के बारा थी कि कट्टा कोट्टक डोरिया नहीं अच्छा कट्टा वो घिल के वो बड़ा पक्का रहर नहीं ढेवरे पल्ले आती की अच्छा की अच्छा वो डमरी अमरी सवार डर नहीं टपटो मैंने
1: भागी
0: सिंह एकदम एकदम वो तो पारेक परल बनाएक परल तब तो जाही छगरी उगरी बन दिए नहीं तो और एक हाई खा दी तो फेन और घर एक मनाई नोकिया नुकसान हुई तो समस्या हुई ना ओके और ये बाहेक अलावा कौन सा काम करती राम बहादुर जी
1: एक मिस्त्री करती हूँ आजकल काम हम कुछ नहीं हो
0: कैसी मिस्त्री हुई आपने राज मिस्त्री हुई कि कठोक मिस्त्री हुई कि कठोक के मिस्त्री ओके को दराज पलंग टेबल कुर्सी बनुया ना अच्छा तो कार्यक्रम में सब आगे जाना एकदम खुशी लागल आज शायद अपने से हमारे पहले सोच बात हुई था नहीं रेडियो तो सुनते रह थोड़ी रहा हुई भी साथ ओके कार्यक्रम वास्ते की माया करती रही सहभागी जनाते कर भी आज राम बहादुर जी हम का सुनई भी ले ले शुरू करी मैं सुने के लागे हमरे सुने के लागे एकदम आतुर बाती अपने के सजना
1: प्राण गीत हो ना सर ना
0: हाँ ले ले शुरू करी हमरे सुने के लागे आतुर बाती सब कुछ है
1: ओती तोती बसे पीपर कोटी रे घनर बसे गुलरा अरे दिन सलाई कच्ची गरी बिगर सुतिया
0: ओहो कार्यक्रम में सहभागी जनाली बड़ा मीठ तर अक्का छुट्टी का अक्के चुटी सुनैली ढेउदौर धन्यवाद कार्यक्रम में सहभागी जनैली अब भाई हमरे एक ठो गीत बजाब अपने लग अपने किहिन किहिन सुनाई चाहबी नाम ले सकी
1: हमारे से बड्डी बखो और हमारे बटरी सहारी के थोड़ी सुना देवी
0: ओके अब लग बिदा हुई राम बहादुर जी राम राम
1: राम राम
0: वहाँ पर गए राम बहादुर चौधरी जी रमाइलो का फिर वहाँ पीपर कोटी से लमकी चुहा छे पीपर कोटी से रमाइलो का फिर वहाँ से ओके कार्यक्रम में सब आगे जने टेकर भी कार्यक्रम में टेकर भी अठी पर एक ठाकुर गीत जोड़ हम गीत के पास में नहीं बार डाल करते कर भी सुनने का 5162655 लाइन खुल रहे

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बर थी राहत
0: का हुई। कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटी। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: क्यों खाने मन तो कहाँ छ, तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
4: तब एक कहाँ सस्त्र यार, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाई छ, बरू एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
3: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त। यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकी जस्तै यार, अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: आई हो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब, पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
1: अरे का करू री बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू, मिलबो नहीं करत, का कहना हो का।
6: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैला बाट, अल्युमिनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
7: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोपराइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98484326।

हजुर, सँगै व्यापार विश्रामके पासे पुनः स्वागत बा कार्यक्रममा। लगभग कार्यक्रमके निर्धारित समय डगर काटे लागल। अप्राटा बाई बाई के जाना देला होगिल बा, अब विदा मंगना देला होगिल बा। तब मारात्रा बदल समामन रेडियो सुनके साथ देली अपने सकू मैगर मैगर कबीला का ध्यो ध्यो धन्यवाद देम। हम कॉल करके साथ देवे सकू संगारी देव से देव देव धन्यवाद देना चाहम। और मिके अब टेक में बैठ के साथ देवे भाई दीपेन्द्र भट्टराय है, फिर एकदम ही मेहनत करके कार्यक्रम मोर आवाज अपने थन पुगा देवे वहां है। फिर देव से देव धन्यवाद देम। और सबसे देव धन्यवाद अपने के हमारे कार्यक्रम है माया करो सकू जन देव से देव धन्यवाद देती। और कार्यक्रम में भेटना बाचा करती अंतिम एक रमाइलो गीत छोटी और कार्यक्रम में भेटना बाचा करती मई मिशन आगे से हम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ रहे। रेडियो टीकापुर FM सुनते कर भी।

0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालयले अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हौ क्रे सड़क के किनारमे पशु चौपाए नै बान देवी सड़क किनारमे माल वस्तु नै कुरा देवी साथे सड़क किनारमा पशु चौपाए बान के ढुंगा बालुवा गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुकरा लेह पर्ने बा।
0: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय लाइकपुर।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगड़ी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाए लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाए लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम सुनने 91-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: अरे छाई रीता हलिया तो यहाँ भन्समना किना काटी है ढिला भी तारी थी ना
1: अरे छाई पैसा ले जा दुकानी में से लहिना साबुन लान लिया तो लहिना साबुन उड़ेल बा
0: छाई दुकानी में जाए लग गया तो एक बार धान से ले जाए मिला मत है दी है स्कूटर ना बा
1: अरे छाई खबरी मना दारी कटना मशीन बा बाहर रहते तो लान दिया ना तो दारी काटक लग बात हूँ
2: दादा ए दादा तई दुकानी में जीबे की टीना कट बे
3: मैं कुछ नहीं करूं तू ही पोर रहल बात है मैं रहल बात है
2: उफ काम से कट्ठा करना हो
4: छाई है छाई व्हीलर के कारण फरक व्यवहार करना लैंगिक हिंसा हो समान व्यवहार से छाई वो छावा दोनों जहीन सफल बन सकाए बालिका तथा किशोरी हिंसा विरुद्ध के अभियान में सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM
5: अस्सी प्रतिशत रोग पानीक कारण लग्न
6: थोपा थोपा में शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधि प्रशोधन गरिएको
7: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लीटर जार में सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ
5: डेलिभरी का लागि
7: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
5: टीकापुर कैलाली
8: संपर्क मोबाइल नंबर 9870 10672
9: स्वास्थ्य का लागि पानी

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9860476417।

0: छिछी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फे का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: कन्थे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लम्की मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके सन्जे 5 बजे थारू भाषक खोज खबरमा अपनाउकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनाउकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो व नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। कैलाली में जापानीज एन्सेफलाइटिस से 7 जना संक्रमित। मच्छर के कटाई से बस्ना उपाय अपनाई पनामन जोड़। 1 महीना में बजेट पुनलेखन पारित करना मुख्यमंत्री भट्ट के घोषणा। सुदूरपश्चिम में सर्पदंश के उपचार के लाग परे बिना एंटी स्नेक भेनम के अभाव। औषधि अभाव लेकर उपचार में समस्या हुईना। सुदूरपश्चिम में बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह के लागतो गिलक जिम्मेवारी पूरा करना मन जोड़। व धनगरी में अवैध सामान सहित 1 महिला पकड़ाओ। आप खोज खबर विस्तार मा कैलाली में जापानीज एन्सेफलाइटिस 7 जना मन संक्रमण हुईलक पुष्टि हुईलवा। एन्सेफलाइटिस संक्रमण पुष्टि हुईलक मना धनगरी के 3, घोड़ागोरी के 2 ओ लम्की के 2 जना रहल बाट। स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के प्रमुख रमेश कुंवर के अनुसार कैलाली जापानीज एन्सेफलाइटिस के जोखिम में रहलक। अबसम 7 जना में संक्रमण पुष्टि हुईलक से सतर्कता अपनाई आवश्यक रहलक बटुलबाट। नेपाल में कार्तिक महीनासम जापानीज एन्सेफलाइटिस जेआई अर्थात मस्तिष्क जुरी के संक्रमण उच्च हुना जोखिम रहत। संक्रमित क्यूलेक्स जात के मच्छर के कटाई से सर्ना यी रोग के समय में पहचान उपचार निहिलकल से मस्तिष्क सोईना पक्षघाट कोमा मजैना ओ मृत्यु सम हुई सेकना अवस्था आई सेकना चिकित्सक बटुलबाट। संक्रमित सुअर बंगुर हाँस बकुला घोड़ा व जंगली चिरैन काटबेर भाइरस बोक्ल रथ ऊह वाकर पाछ मनिन हन काटबेर संक्रमण फैलत। मनिन से मनिन में प्रत्यक्ष निसरत। क्यूलेस जात के खैयर रंग के लम्मा ग्वारा रलक मच्छर संझ्या उहर व बिन्हेक झिसमिसे मन ढ्यूर सक्रिय हुईना हुईल कुंवर से ऊ समय में सावधानी अपनाए पना में कुंवर के कहाईबा। गैलक वर्ष के तथ्यांक हारबर लामखुट्टे के टोकाइसे औंलो डेंगू स्क्रब टाइफस हात्ती पाइले जापानीज इन्सेफलाइटिस जसिन रोग के बिरहमेन बहती गेलबाट। असिन खाली रोग से बचक लागि मच्छरन के कटाई से बस्ना उपाय अपनाए पना। धान खेत मन पानी जमलक ठाव मन ओ सुअर अथवा बंगुर हाँस के फर्म लग के बस्ती ढ्यूर जोखिम हुईना हुईल कुंवर से सरसफाई में ध्यान देना। सतर्कता अपनैना के संग व्यवस्थित करना पना वहां के सुझाव बा। टीकापुर मनाफे लमखुट्टे के कटाई से लग्ना रोग से बचक लागी स्वास्थ्य शाखा समुदाय में सरसफाई व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सचेतना जगैना करलबा। पालिका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत शिक्षा देना। टोल विकास संस्था से सहकारी करकन सरसफाई करना काम में सहभागी कराईना कलक। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल बटुलबाट। जानकी गांवपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जीत बहादुर चौधरी फे मच्छरन के कटाई से बस्ना बचक लागी नागरिक हुकन स्वास्थ्य व सरसफाई संबंधी सचेत करैना करलक जानकारी करैले बाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट पुनलेखन करना हुईलबा। प्रदेश सभा में विचाराधीन अवस्था में रहलक बजेट पुनलेखन कर पारित करना सरकार के तैयारी रहलबा। मुख्यमंत्री खगराज भट्ट बुधवार प्रदेश सभा में विश्वास के मत मंगना क्रम में बजेट पुनलेखन करना जानकारी दिल रहल। वहां बजेट पुनलेखन के लाग कुछ चाट पर्व के दिन बाहेक अन्य विदा के दिन समेत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय खुला ढर्कन काम आग बढ़ना बटुलबाट। मुख्यमंत्री भट्ट जन अपेक्षा अनुसार बजेट पुनर्लेखन कैक पारित करपना में जोड़ दिलबाट। बजेट कार्यान्वयन करपना समय 1 महीना कलहक बाकी रहलक कुंवर से पुनर्लेखन पारित व कार्यान्वयन तीव्रता देहपना वहां के कहाईबा। वहां आपन नेतृत्व के सरकार विकास में कौनो निश्चित क्षेत्र व शहर मकल केन्द्रित नई कैक प्रदेश के पहाड़ हिमाल व तराई के संतुलित समानुपातिक समावेशी ढंग से आग बढ़ना बटुलबाट। भौतिक पूर्वाधार संग शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाई आर्थिक सामाजिक तथा मानव विकास में फिर प्राथमिकता में धर्क बजेट पुनर्लेखन करना वहां स्पष्ट पलबाट। मुख्यमंत्री भट्ट आगक सरकार लनलक बजेट में कौनो मजा कार्यक्रम रहलक वर्षे उही पुनर्लेखन मार्फत समेटना बटुलबाट। बजेट बजेट पूर्ण रूपमा लौव निहुना बटुटी वहाँ आवश्यक सुधार सहित आग बढ़ैन स्पष्ट पर्लबाट निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामी अप्न विनियोजन कलक बजेट कटौती हुना चिन्ता व्यक्त करल्पा छ। मुख्यमन्त्री सक्कु क्षेत्र समेतका बजेट लन्ना जवाब देलबाट सरकार बजेट पूर्ण लेखन कर्क प्रदेशसभा से पारित गराइल्पा छ। बाँकी रहलक अवधिमा कार्यान्वयन समेत तीव्रता दिन तयारी कर्लबा बजेट पारित हुई नै स्याकबे लम्मा समय थेसे प्रभावित बनलक प्रदेश सरकार योजना तथा कार्यक्रम हुन गति दिन सरकारकै लक्ष्य रहलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल श्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरू योजना तथा बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड़ देगिल्बा। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ नेपालकै सहकार्यमा युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बुधबार धनगढ़ीमा आयोजना कलक प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय गुरू योजना व कार्यक्रम कार्यान्वयनकै लागि तीन तहकै सरकार तोगिलक जिम्मेवारी पूरा गर्नमा जोड़ देगिलक हो। कार्यक्रममा बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि 2077 से तोगिलक सूचक के कार्यान्वयन तीन तह के सरकार के भूमिका तथा बाल श्रम मन संलग्न बाल बालिका के संरक्षण व पुनः स्थापना के विषय में छलफल कैगिल रह बाल श्रम अंत्य कर कानूनी दायित्व के संग बाल अधिकार व सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर स्थानीय तह थे संघीय सरकार सम्म के साझा प्रयास आवश्यक रहलक सहभागी हुकर बटुलाबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछा निनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुइलकमा र बेरम्हे उक्र सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध गर्दती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल भिडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड्नी सेवा टुटल हाट जोड्नीमा प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जाँच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600095 ओ मोबाइल नम्बर 9848423059।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। प्रदेशकी विभिन्न स्वास्थ्य संस्था हुकर मफे दवाई के अभाव रहलबा। कलशे सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा रहलक दवाई के मौजदात फे घटती गइलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्पदंश के उपचार केलाक प्रयोग हुइना एन्टी स्नेक भेनम अर्थात विष विरूद्ध के औषधि के अभाव हुइलबा। प्रदेशकी विभिन्न स्वास्थ्य संस्था हुकर मफे औषधि के अभाव रहलबा। कलशे सुदूरपश्चिम प्रदेशकी स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा रहलक दवाई के मौजदा फे घत्ती गैल खो छ महिना आग प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा न 500 भाइरल दवाई रह ऊ दवाई पहिले नै ओराइल पाछ प्रदेश भित्रके विभिन्न जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा मौजदात रहलक संकलन कर्क लनलक दवाई फे अब ओरेना ओराई लागल बा पहिला लनलक सक्कु दवाई ओराइल पाछ संकलन करलक दवाई फे ओरैना अवस्थामा पुगल बा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मना अब 70 भाइरल दवाई कलहक मौजदात रहलक प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र के कोल असिस्टेन्ट कुंवर बटुलबाट कुंवरके अनुसार अब फे दैनिक जसिन सर्पदंश हुईटी रहल कुंवर से दवाई के अभाव हुईटी रहल बा एक जना सर्पदंश के बेरहमेन हना कमती मना 10 जना भाइरल आवश्यक पना हुईल कुंवर से अब केन्द्र मना मौजदात रहलक 70 भाइरल दवाई कलहक हली ओरैना डेग गिल बा सर्प के टोकाई से 20 विरूद्ध के दवाई प्रदेश खरीद कर नै मिलना सिधै केन्द्र सेन ऐना हुइला कुंवर से फे यहाँ आपूर्ति के समस्या हुइटी रहल बा याकर लागि संघीय मन्त्रालय के स्वास्थ्य सेवा विभागमा खबर करती रहलक ओ अब के 15 दिन मना दवाई के आपूर्ति हुइना आश्वासन पहिलक फे असिस्टेन्ट कुंवर के कहाई रहल बा यी 15 दिन भित्र कहो धिर मनिन हन सर्प कटलक अवस्था मन आमिन समस्या हुइना उहाँ बटुलबाट टीकापुर अस्पतालमा फे सर्पदंशके दवाईके अभाव हुइलबा टीकापुर अस्पतालमा अब 40 भाइरल कलहक दवाई मौजदात रहलबा यी 40 भाइरल 4 जना हन प्राथमिक उपचार कर कलहक पुग्ना व उही से धिर बेरमेन अहिलेसी समस्या हुइना समस्या देखदिना टीकापुर अस्पतालके खोप शाखा प्रमुख मोहन सिंह साउद बटुलबाट आमिन फे असोज महिनासम्म यहाँ सर्पदंशके बिरहमेन ऐना हुइला कुर्से दवाईके आपूर्ति हली हुई पर्ना देखजैत इहन मध्यनजर कर्क नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभाग हली दवाई खरिद कर्क सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाई पर्ना देखगिल्बा कैलालीके धनगरीमा अवैध सामान सहित एक महिला पक्राउ परलबाट धनगरी उपमहानगरपालिका 7 देवरियाके 38 वर्षीय निर्मला जोशी अवैध सामान सहित पक्राउ परलक फिट जोशी घर मन भण्डारण कर्क ढरलक अवस्थामा अवैध रूपमा भारत से भन्सार छली कर्क लनलक अन्ताजी मूल्य 1,42,000 बराबर के कुर्ता धोती गाउन लगायत के सामान बुधबार दिन कर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली से खटगिलक प्रहरी के टोली फेला पार्कन ऊ सामान निर्मला जोशी आवश्यक कार्यवाही के लागि भन्सार कार्यालय त्रिनगर कैलालीमा पठेलक जानकारी देगिल्बा अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वागले सामाजिक लेखा समितिमा वैदेशिक सहायता घट्टी गैलको वैकल्पिक निजी पूँजी परिचालन करपना बटुलबाट वहाँ चालू बजेटमा करिब 2,12,00,000,000,000 रूपियाँ वैदेशिक ऋण ओ करिब 62,00,00,000,000 रहलक उहाँ बटुलबाट अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वागले नेपालमा वैदेशिक सहायता पाछक समय घट्टी गैलक बटुलबाट सार्वजनिक लेखा समितिके बिहिबार बैठकमा उहाँ पाछक समय अनुदान तथा सहुलियत पूर्ण ऋणके स्रोत सकिर हुइटी गैलक बटुलबाट वैदेशिक सहायता घट्टी गैल पाछ वैकल्पिक रूपमा निजी पूँजी परिचालन करपना अवस्था अहिलक उहाँ बटुलबाट उहाँके अनुसार नेपाल पहिला बजेट थिएसे नै राजस्व निपुग्ना खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋण मार्फत पूर्ति कर्ती आइलबा तर अर्थतन्त्र ओ बजेटके आकार बढ़ती जाइबेर वैदेशिक अनुदानके हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्टी गैलक उहाँके कहाइबा अर्थमन्त्री वागले चालू बजेटमा न करिब 2,12,00,000,000,000 रूपियाँ वैदेशिक ऋण लिन लक्ष्य रहलक मन वैदेशिक अनुदान करिब 62,00,000,000,000 रूपियाँ अनुमान कर्गिलक बटुलबाट यद्यपि पाछक वर्षके बजेटमा न 48,52,00,000,000,000 रूपियाँसम्म अनुदान अनुमान कर्गिलसे फे वास्तविक प्राप्ति 10,15,00,000,000,000,000 रूपियाँके हाराहारीमा सीमित रहना कर्लक उहाँके कहाइबा वैदेशिक सहायता न गैर सरकारी तथा संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था द्विपक्षीय अनुदान ओ बहुपक्षीय सहुलियत पूर्ण ऋणकै अलगअलग विश्लेषण करपना उहाँ बटुलबाट खोज खबर म एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनी निवाती सुन्दिरहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हुकना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो न कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए।
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
8: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
9: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल टीकापुर एक कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सभापति रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभाकै दुई तिहाई बहुमत कलहक संविधान संशोधनकै लागि पर्याप्त अंक निहुलक बटुलाबाट बिहिबार प्रतिनिधि सभाकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आफन धारणा धरती सभापति लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद संविधान संशोधनकै बाट कसिक नै उठाइन आग्रह कर्लखुइट कटरा संघरेण हाम्रो संविधान संशोधन कर्वी कैकन कल संविधान सभामा दुई तिहाई नै पुग्ति ऊ संविधान संशोधन कर पर्याप्त अंक नै हो लामिछाने कल संविधान संशोधन के लाग प्रतिनिधि सभाके दुई तिहाई कलहक हुई निस्याकट असिनबाद बलबेर विषय वस्तु के संवेदनशीलतामा ध्यान दिए बना उहाँ बटुलाबाट सरकार सहयोग कर्वीकना बाट मफे अप्नो स्वागत गर्ना बटुलाबाट कैलालीकै बर्दगोया गाउँपालिका तीन स्थित लालीगुरा सामुदायिक वनमन शिकार खेल्न करामन भरुवा बन्दुक गोली लाकन 43 वर्षीय पदमबहादुर विश्वकर्माके ज्यान गैल घटनामन प्रहरी दुईजना पक्राउ पर्लक जनागिल्बा। भदौ 2 गते दिनक शिकार खेल्न क्रम कृष्ण बहादुर बुढा छेत्री जंगली बडेनहल गोली मर्ना क्रममा गोली विश्वकर्माके दाहिने छातीमा लगलग प्रहरी जनैलबा घाइते विश्वकर्माके उपचार केलाग लैजिना क्रममा सरकमन ज्यान गैल रह घटना पाछ सभन बनुवमन लैजाकन फगलक आरोपमा मृतक के भैया गणेश विश्वकर्मा देलक जाहिरी के आधारमा कृष्ण बहादुर बुढा छेत्री ओ राकेश डंगौरा थारूह प्रहरी पक्राउ कर्लबा। प्रारम्भिक अनुसन्धान के क्रममा राकेश घटनामन प्रयोग कर्गिलक भरुवा बन्दुक जदै ठाडा स्थित काडा लढेक बगरमन माटी के तर लुकागिल खुलगिल पाछ दुई थान भरुवा बन्दुक समेत पकरगिल्बा। घटनाबारे थप अनुसन्धान हुइतिरलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली जनैलबा। यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल जेती जेती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से कैलालीमा जापानिज इन्सेफलाइटिस सातजना संक्रमित लामखुट्टेके टोकाइसे बस्न उपाय अप्नाइपनामा जोड एक महिनामा बजेट पुनलेखन पारित गर्न मुख्यमन्त्री भट्टराईको घोषणा सुदूरपश्चिम सर्पदंशको उपचारकै लागि प्रयोग हुने एन्टी स्नेक भेनम दवाईको अभाव हुइती औषधि अभावले उपचारमा समस्या हुन सुदूरपश्चिम बाल श्रम युक्त मुक्त स्थानीय तहके लागि तोगिलक जिम्मेवारी पूरा गर्न मन जोड ओ धनगरीमा अवैध सामान सहित एक महिला पक्राउ लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार छ बजे खोज खबर सुन सिक्बी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी ना धन्यवाद दिति मै गीता चौधरी बिदाई टू राम राम
10: भजनी में स्वास्थ्य शिविर हुईना बारे के सूचना
11: भजनी नगर पालिका के समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली के आयोजना ओ सौभाग्य अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर धनगढ़ी के विशेषज्ञ डाक्टर हुकरन से निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुईना हुईले कोर्स स्वास्थ्य सेवा देना चाहना महानुभाव हुकरे टोकल मिटी समय ओ स्थान में उपस्थित हुके मौका के फायदा ले
10: शिविर में पैना विशेषज्ञ सेवा हुकर
11: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा
10: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा
11: जनरल फिजिशियन सेवा
10: जनरल सर्जरी सेवा
11: शिविर होइना मिति 2083 भाद्र 7 गते आइतबार
10: स्थान महुन्याल मावि भजनी कैलाली
11: समय बिहान के 9 बजे से 4 बजे सम
10: भजनी नगरपालिका नगर कार्यपालिका के कार्यालय भजनी कैलाली

थप जानकारी तथा नाम दर्ता का लागि फोन नम्बर 9826014300 र 9846349785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर, जोशीपुर गाउँपालिका 2, जोशीपुर बजार, कैलाली।

0: for just $67.
1: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडा कार्यालयको अनुरोध। जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडावासी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, सड़क किनारमा पशु चौपाया नबान्न र सड़क किनारमा मल वस्तु नथुपार्न अनुरोध गर्दछौ। साथै सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधेर ढुङ्गा बालुवा माटो ग्राभेल मल थुपारेर दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी थुपार्ने व्यक्तिले लिनुपर्नेछ। जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडा कार्यालय लायकपुर।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैनै जइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकरछु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
1: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: परसेंट समय कैश फिरता
1: सही पनी चाहा पनी
2: कैश फिरता लिनु भाई
3: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
4: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59

0: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जै भो? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल?
3: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो नि करत का कैन हो का
2: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुन कि गुङ्गुवा बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5143 26।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35 उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98-57-85-63-22 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: पता ले लीजिए।
1: एंसल पैक किन लीजिए।
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी।
0: कैश फिर तक ले लीजिए। कैश फिर तक ले लीजिए।
2: एंसल पैक किन लीजिए। शर्त लागू हुई। एंसल नेपाल के लग।
3: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।